वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय किया अपने गाना सिर्फ यानी रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट सैंड में। वही कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा सिंपल अगर रहता है तो बहुत अच्छा हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, देन सारी चीज़ों के लिए। तो रैली का जो ये वेस्टर्न BRT बन रहा है ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है एंड रैली ड्राइविंग के लिए बहुत बेहतरीन शहर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक रैली को पूरे अमेरिका में गाड़ी चलाने के लिए छठा सबसे अच्छा शहर माना गया है। कम ट्रैफिक जाम और सारी चीज़ें ठीक ठाक रैली में ही चलती है। तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टालियां तो बनती है रैली के लिए। और अमेरिका का नया नंबर एक का शहर भी रैली को घोषित किया गया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडितवाड़ा नाइट्स, बने रहिएगा क्योंकि सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ये बहुत ही सुहाना गाना जो कि पेश होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

सुन रहे रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड एंजॉय किया अपनी गाना गाना ही काफ़ी बेहतरीन था। एंड ये मतलब ऐसा है कि यार म्यूजिक इज़ द ओनली थिंग, इट्स अ थेरेपी कि आपका मूड कैसा भी हो म्यूजिक सुनो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे आपके जेब और बजट से जुड़ी है। नॉर्थ कैरोलिना के तमाम विधायक और बड़े नेता आज रैली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और विशेष एक दिवसीय सत्र के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस खास मीटिंग का केवल एक मुख्य एजेंडा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को कम करना और आम जनता को बड़ी राहत देना। सी लाइक पेट्रोल इज द थिंग और डीजल इज द थिंग जिसकी वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है और ये खर्चे भी बढ़ा देते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन तो हर किसी के लिए करना ज़रूरी है लेकिन जेब पर अगर ये भारी पड़ रहा हो तो दिक्कत हो सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट।

राज्य में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर काम करना और आम जनता को बड़ी राहत देना। इस सत्र के दौरान राज्य की 41 सेंट प्रति गैलन वाली गैस टैक्स और अस्थायी रूप से निलंबित या कम करने का प्रस्ताव ऐतिहासिक वोटिंग पर होने की संभावना है। यदि ये कानून पास हो जाता है तो पूरे ट्रायंगल रीजन यानी रायडी, धरम और आरटीपी के निवासियों को हर बार गाड़ी में तेल भरवाते समय एक बहुत बड़ी बचत देखने को मिलेगी। लोकल बिजनेसमैन और रोज़ाना सफ़र करने वाले नौकरी पेशा लोग जो है, जिनका नौकरी ये पेशा है, इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इससे माल ढुलाई और रोज़मर्रा का सफ़र एंड खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। आप सुन रहे रेडियो नायरा।

आप सुन रहे रेडियो नारा पंडित वाला नाइट्स एंजॉय किया आपने ये गाना जो था वाकई में काफी बेहतरीन। तो बात करते हैं धरम शहर के विकास और उससे जुड़ी जनता की चिंताओं की। धरम सिटी काउंसिल ने एक बहुत ही करीबी मुकाबले में यानी 4-3 वोटों से वेक फॉरेस्ट हाईवे पर एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत यहाँ करीब 200 नए घर बनाए जाएंगे। वैसे तो ये खबर सुनने में अच्छी लगती है लेकिन लोकल निवासी इस फैसले से थोड़े परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले से ही पानी का प्रेशर बहुत कम है और ट्रैफिक की हालत ये है कि आधे मील की दूरी पर मौजूद किराना दुकान तक जाने में आधा आधा घंटा लग जाता है। ऐसे में 200 नए घर बनने के बाद जो दिक्कत आने वाली है वो आम जनता को लोकल निवासियों को आने वाली है ऐसा उनका कहना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंजॉय करते अगला गाना बता रहे क्या रेडियो नायरा पर पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे रेडियो नायरा निर्मदा नाइट्स है और अब रुक करते हैं शिक्षा जगत की एक ऐसी खबर की ओर जो बच्चों और शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी है। वेक काउंटी स्कूल बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लिया है। अब काउंटी के सभी स्कूल प्रिंसिपलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने स्कूल परिसरों यानी कैंपसों में शिक्षक संघ दैट इज टीचर यूनियन के प्रतिनिधियों को आने की अनुमति दे। इस नए नियम के तहत यूनियन के प्रतिनिधि स्कूलों में जाकर शिक्षकों से मिल सकेंगे, उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे और उनके अधिकारों के लिए बात कर सकेंगे। जहां एक तरफ शिक्षण संगठन इस फैसले को वेलकम कर रहा है और इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इससे स्कूलों के रोजमर्रा के कामकाज और कड़े अनुशासन को बनाए रखने में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

0: You gotta. अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

इंजॉय किया आपने गाना, ये गाना काफ़ी बेहतरीन था। एंड आज के बुलेटिन की आखिरी खबर हमारे हाई स्कूल छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कैरोलिना शिक्षण विभाग ने राज्य के हाई स्कूल स्तरों पर गणित यानी मैथ की पढ़ाई की आवश्यकताओं और मानकों के बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अधिकारियों का कहना है कि पुराना सिलेबस और नियम आज के आधुनिक दौर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी पीछे छूट रहे थे। इस टाइम फॉर चेंज पहल के तहत मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम को अब अधिक व्यवहारिक और जॉब ओरिएंटेड बनाया जा रहा है ताकि छात्र कॉलेज और भविष्य के करियर के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। नए नियमों के तहत अब डेटा साइंस और कंप्यूटर आधारित गणित पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हालांकि स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि मिड सेशन में इस तरह से बड़े बदलावों को लागू करना और नए पैटर्न के हिसाब से बच्चों को ढालना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला नाइट्स।

खूबसूरत और म्यूजिक खबर ये है, म्यूजिकल खबर ये है कि हमारे डाउनटाउन रैली की फेयटविल स्ट्रीट पर हाल ही में रैली वाइड ओपन म्यूजिक फेस्टिवल का शानदार आयोजन हुआ। ये 3 दिनों का एक ऐसा त्यौहार था जिसने पूरे शहर को संगीत, कला और खुशियों से सराबोर कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फेस्टिवल में एंट्री बिल्कुल फ्री थी, यानी कोई टिकट या पास नहीं चाहिए था। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। सड़कों पर लाइव पारंपरिक ब्लू ग्रास, अमेरिकाना और फोक म्यूजिक गूंज रहा था। रंगी बिरंगी ट्रक्स और बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप इस बार यहाँ जाना चूक गए तो कोई बात नहीं, इस खूबसूरत वीडियो वीडियोज़ इंटरनेट पे छाए हैं, तो आप इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना राइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

हाइट्स अब एक ऐसी खबर जो हम सभी ट्रायंगल वासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। टूरिज्म और इवेंट्स की दुनिया में मशहूर मैगजीन टुडे ने अपने सालाना अवार्ड्स की घोषणा की है और इसमें हमारे ग्रेटर रैली कन्वेंशन एंड विजिटर्स ब्यूरो विजिट रैली को पूरे नॉर्थ कैरोलिना का टॉप डिस्टेंशन मार्केटिंग संगठनों में विजेता चुना गया है। जूरी और वोट देने वाले लोगों का कहना है कि रैले शहर में नए नए शानदार होटल, मैशलिन मान्यता प्राप्त रेस्टोरेंट और वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर्स तो है ही, साथ ही यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है इस पूरे अमेरिका की मीटिंग्स जो होती है और घूमने के लिए अच्छी जगह बताई जा रही है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहते हैं रैली में क्या खास है, तो आप बताइएगा कि हमारा शहर अब पूरे अमेरिका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शहरों के यादी में टॉप पर आ चुका है। आप सुन रहे रेडियो नायरा पंडित मदर नाइट्स।

यदि कुछ खबरें जिनकी वजह से लाइक रैली के लिए बहुत अच्छी खबरें थी एंड सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मौसम तो इतना सुहाना हो चुका है कि इस प्यारे से मौसम में जो मज़ा आ रहा है वो अप टू द मार्क है। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट टाइप करना है रेडियो नायरा, देन यू विल गेट एन ऐप। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस शर्त इतनी है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। रेडियो नायरा मतलब छाया हुआ है हर तरफ, हर किसी की जुबा पर रेडियो नायरा का नाम है। तो आपने एंजॉय किया ये गाना, और भी बेहतरीन गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ सिर्फ यानी सिर्फ रेडियो नायरा पर। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड एंजॉय कीजिएगा ये अगला गाना। रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: फलाना खाता हूँ, पैसा हो जाए।
1: माइट्स एंड लाइक इंस्पायरिंग और पॉजिटिव खबर धर्म से है, जहां युवा पीढ़ी समाज में एक बड़ा बदलाव ला रही है। मानसिक स्वास्थ्य और जो भी लाइक मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फिजिकल हेल्थ तो होना डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन मेंटल हेल्थ का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी जिस तरह से ग्रो कर रही है, काश उस तरह से सारे देश ग्रो कर पाते। तो इन्हें ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली चीज़ें करनी चाहिए। उनके लिए युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी लाइक पुढ़ाकार ले रही है एंड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। धर्म कन्वेंशन सेंटर में होने वाला फाइट नाइट इवेंट है, जहाँ छात्र आपस में जो है वो ये इवेंट करेंगे, लोगों की मदद करेंगे एंड युवाओं का ये जोश समाज के प्रति उनका योगदान सचमुच बहुत काबिले तारीफ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाधा नाइट्स, रेडियो नारा पक्का देसी पक्का लोकल।
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

अपने रेडियो मैरा पर बता नाइट से इंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन है। एंड मैं यही कह रहा था कि अब वक्त हो चुका है अपने लवेबल लोगों के साथ इंजॉय करने का, डिनर करने का, घर लौटने का। यही वो समय है जो काफ़ी सुकून देने वाला रहता है। इट्स लाइक बहुत मतलब फैमिली मेम्बर एक साथ बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। एंड वेल मौसम तो अच्छा ही है, ट्रैफिक थोड़ी मिल सकती है आपको, लेकिन आपको गति पर काबू करना है। अगर आप गति पर काबू करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो कल मिलूँगा आपको रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट से शो पर। ये 7 से 10 का टाइम यार आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलते हैं कुछ नए गानों के साथ, कुछ नई अच्छी खबरों के साथ एंड कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड गुड नाइट, शब्बा खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: दीजिए सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।
3: Listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

तो खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू तो।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

आपकी मुर्गी ने आपको उठाया हो या ना उठाया, मैं आ चुकी हूँ आपको उठाने। रेडियो नायरा पे यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट होस्ट अमृता, और सुबह सुबह के टाइम में आप सब लोगों को पहले तो मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ। एंड ऑन दैट नोट मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी ऐसी अतरंगी बातें जिसे सुन के आपका काफी फायदा होने वाला है। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि यार रेडियो है, ऑडियंस काफ़ी अच्छी है मेरी, तो इन्हें ना ये शरारती वाली चीज़ें सिखाती नहीं हूँ, इन्हें ना ये बताती रही हूँ कि एक्चुअली झूठ कैसे बोल रहा है। बट अब मुझे लगता है ना कि एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद कर सकता है, तो मैं आ चुकी हूँ दोस्तों आप लोगों की मदद करने, और कैसे करूँगी मैं मदद वो ज़रूर बताऊँगी आपको, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक। तो कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपकी बेस्ट फ्रेंड अमृता आ चुकी है एंड बेस्ट फ्रेंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो कांड होते हैं ना वो करना आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ही सिखाते हैं। सो राइट नाउ आई एम योर दैट वन फ्रेंड। आपको अपने सीवी में एक्चुअली झूठ बोलना सीखना पड़ेगा और ये मैं इसलिए रीजन से कह रही हूँ क्योंकि जिस जॉब पे आप अप्लाई करते हैं, जिस कंपनी पे आप अप्लाई करते हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी झूठ लिखे होते हैं। सो व्हाई कैंट वी डू दैट द सेम। तो अगर आपको कोई बोले दैट यू गॉट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, पुट 5 देन, यू नो। इसके अलावा अगर आपको निकाला गया है किसी कंपनी से तो आप ये लिखे ना, यू वॉन्टेड समथिंग न्यू, डोंट नो हाउ टू डू इट, यू डू नाउ। तो सबसे पहले आप ना एक ऐसे लर्नर बन जाइए जो किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर ले, जैसे मेरी ये वाली बातें, और फिर गेट द जॉब फर्स्ट एंड फिगर ऑल दैट थिंग लेटर। और आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए, इस मशवरे के लिए, क्योंकि आई नो कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है। AI के जनरेशन में एक्चुअली हर किसी को अपने रिज्यूमे में थोड़ा बहुत तो झूठ लिखना ही पड़ता है टू गेट दैट जॉब। क्या ये झूठ के साथ मैं अपनी बात करती हूँ बंद। आई प्रॉमिस कि आज के पूरे दिन में आप कोई और झूठ बोलने के मशवरे नहीं दूंगी आपको। इसी के साथ चलिए सुनते हैं आने

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: सर्दी की आहट और रोशनी का त्योहार, ये दोनों आ रहे हैं। और अगर आप भी US में हैं और मिस कर रहे हैं असली इंडियन दिवाली, तो टेंशन किस बात की, क्योंकि रेडियो नारा है ना। वेलकम बैक टू रेडियो नारा एंड दिस इज योर होस्ट अमृता, और मैं बता रही हूँ आपको इस साल का सबसे बड़ा होने वाला धमाका। जी हाँ, उसके बारे में मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में डेट्स को, बिकॉज सैटरडे अक्टूबर 24, 2026 इज गोइंग टू बी दैट डे जहाँ Diwali Fest 2026, a grand celebration of light, culture and community, celebrate kiya jayega. Aur kahan par? Phuket Varina High School. Ji haan, shaam ko 6 baje se lekar ke 10 baje tak is party ka aap maza utha sakte hain. Aur zara sochiye, 180 plus performers, 12 plus vendors aur wahi aapka apna chahita highway dhaba. एक ही छत के नीचे, मतलब ठुमके भी लगेंगे और पेट भर के खाना भी मिलेगा, ढेर सारी फेस्टिव वाइब्स एंड शॉपिंग भी। यू कैन बाय द टिकट्स फॉर जस्ट 5

0: Okay, so welcome back to Radio Naira and you're listening to your host Amrita. और ये गीता की एक छोटी सी लाइन है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें बस कर्म करना है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार तो कभी था ही नहीं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म है, उसे तू करता जा। ये कर्म ही तो है जो आपको आप बनाता है। अब वो कैसे कर्म आप करते हैं ये बिल्कुल आप पर ही है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। इट्स ऑल ऑलमाइटी एंड गॉड ऑफ कोर्स। वैसे मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि इस पूरे दुनिया में, नॉट जस्ट दिस दुनिया, इस पूरे संसार यूनिवर्स की मैं अगर बात करूँ तो इन सभी चीजों का एक ही मतलब है, एंड दैट इज गॉड। भगवान ही भगवान हर जगह है, कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। और मैं ये भी मानती हूँ कि हम अपने आप को भगवान ना माने, बल्कि भगवान हम में है, हम ये माने। एंड ऑन दैट नोट चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना और मैं मिलती हूँ आपको ऑन द अदर साइड, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है रेडियो नायरा होरोस्कोप रैपिड फायर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके जोडियाक साइंस और उसके यू नो होरोस्कोप्स के बारे में। तो वो सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो नायरा के साथ। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस सारी बातें करेंगे हम, तो कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना।
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
2: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
3: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
2: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
3: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
2: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
3: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
2: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
3: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
2: Or visit brown-immigration.com.
3: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं ना, Tata product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते, पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते। ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिश्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanish, a Tata product.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM. Pakka desi, pakka local.
4: Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM, and 99.9 FM, SD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning, Hazi, aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work, aur bhai kaam ka tension. But figure not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. Aur obviously, masti to continue chalte rahne वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ, और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ, और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन विद मोर देन 60 वेंडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। This family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो।

0: ये धमाकेदार गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4, 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग द टूल्स एंड ऑल। पर राली गेट रेडी फॉर स्पार्कलिंग ज्वेलरी एक्सपीरियंस। 17th और 18th अक्टूबर को आइए राली ट्रंक शो में एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट राली कैरी। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक डिस्कवर कीजिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन और एंजॉय कीजिए मेकिंग चार्जेस पर 25% तक का ऑफ। तो इस स्पेशल अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और 17th और 18th अक्टूबर ये डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अपनी पसंद की ज्वेलरी चुनिए और अपनी हर खुशी को बनाइए और भी स्पार्कलिंग। राली ट्रंक शो, जहां स्टाइल मिले स्पेशल सेविंग के साथ। बल फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Is the Monkey Dar Gaani Ke Baad one more time? Welcome here, on 101.9 FM, 99.9 FM, SG4 for 90 AM and 99.9 FM, SG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स ओरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स ओरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for the this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sundariye Monica ke saath Radio Nayra, paka desi, paka local.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us
1: the
0: at
1: the Ashley Sanchez Show is on, and the North Carolina Courage are making their push for the playoffs. With only two regular season home games left, every match matters, and every moment could be historic. Don't wait for the highlights. Don't watch from the couch. Be there to experience it live. Tickets are selling fast. Get yours before they're gone at tickets.nccourage.com.
2: Achha, suno, you're coming for Tanishq's Rally Trunk Show, na?
3: Kab?
2: Arre, I told you last week. It's on October 17th and 18th at Courtyard by Marriott Raleigh, Cary, 1008 Parkside Main Street, Cary, North Carolina 27519, from 11 a.m. to 7:30 p.m. We had planned to get dinner also after.
3: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
2: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
4: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिस विले, रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में. गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

जाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक। वेल, हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: पुतनी का भागने न पाए।

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।
1: हार्ट बीट

Awesome Blossom Ghana, aapne suna on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira Fame. Main hoon aapki apni Monica aur aap suna rahe hain Triangle Rooms and Talk. हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट. नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट, पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इस और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो 9 पक्का देसी पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान नाइन जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट नाइन जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पकड़ी सी पकड़ी

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा, बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर, और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4, 4090 AM, 99.9 FM SG3, 4 Telugu, Naira FM. हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स out the purple carpet every other summer, transforming Winston Salem into the mega performing arts center with more than 120 performances in number of the city venues. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं. इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

अगर आप ज्वेलरी शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा एंड यू।

वर्ड रैली ट्रंक शो आ रहा है 17th और 18th ऑफ अक्टूबर को कोटेड बाय मैरियट रैली कैरी में सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक। और सबसे खास बात, यहां आप एंजॉय कर सकते हैं गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर मेकिंग चार्जेस में अप टू 25% ऑफ। तो अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज कीजिए और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइए। मार्क्ड डेट्स 17th एंड 18th ऑफ अक्टूबर कोटेड बाय मैरियट रैली कैरी रैली टंग शो, बिकॉज एवरी ओकेजन डिजर्व्स अ लिटिल मोर स्पार्कल। नाउ यू enjoy all the upcoming songs only on Naira.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोग।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: माझा साजण जागा झाला हो सूर्य उगवला एक चिमणा चिवचिवला।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं
0: हैं कुछ समझ में नहीं आया
1: फिर से सुन मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं के मायने के दाएं
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स। और आज जैसे ही मॉर्निंग में हर जगह पे एक खबर फैली, एंड खबर इज दैट कि नाना पाटेकर, सबके चहेते नाना पाटेकर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। नाना पाटेकर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे, चाहे मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। नाना पाटेकर ने फिल्म जगत में जो योगदान दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और उसके बाद लेजेंड, हर तरह की मूवी उन्होंने की, चाहे फिर वेलकम में उन्होंने एक भाई का, उदय भाई का किरदार निभाया हो, या फिर जो भी मूवीज़ हैं उनकी, उनमें एक एग्रेसिव डैशिंग पर्सनैलिटी का किरदार निभाया हो। नाना की एक्टिंग आज भी इस फिल्म जगत में जीवित रहेगी, ऐसा लग रहा है। तो रेडियो नायरा, इट्स लाइक क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आप बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

नाना चले गए। ये तो पहले बात तो इट्स लाइक हो ही नहीं रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे फ्रेंड्स भी नाना के बहुत अच्छे फैन हैं, मैं भी नाना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि काश ही कोई मीम हो या फिर ऐसा कुछ हो या फिर किसी ने मजाक किया हो। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इट्स लाइक क्या कहे। और मॉर्निंग से मतलब आज जो मैं शो करने बैठा हूँ एंड शो कर रहा हूँ तो एक एनर्जी नहीं हो सकती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लाइक कैसे मैं इंटरेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सो इट्स लाइक या सो ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का तो है ही, लेकिन फैन के साथ। और क्या मूवी आने वाली थी, चाहे मराठी हो हिंदी हो। आप सुन रहे रेडियो 90.1 नाइट्स।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

लाइक ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी सबके लिए, बट क्या अभी आगे तो सारी चीज़ें करनी है। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित नाइट, एंड वही इट्स लाइक यार नाना पाटेकर की जो एग्रेशन, उनका जो एक्टिंग इतना नेचुरल हुआ करता था, उतना नेचुरल एक्टिंग शायद ही बहुत कम लोगों ने किया हो, जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को। उनका कहना था कि हर किसी ने अपने ज़िंदगी का एक साल तो भी आर्मी के लिए देना चाहिए। वो खुद आर्मी से बिलोंग करते थे एंड उसके बाद एक्टिंग क्षेत्र में वो आए, एंड जो उन्होंने तहलका मचा दिया, मतलब इट्स लाइक फिर उनके वो मशहूर डायलॉग्स ही हो या फिर कुछ भी हो, कंट्रोल उदय अच्छा है। ये जो उनकी आइडेंटिटी थी एक अलग लेवल की थी। उसके बाद कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो, उनकी शायरी का भी अंदाज़ अलग था।

आप सुन रहे रेडियो नारा पटेल मतलब नाइट्स। और अब रुख करते हैं कि लोकल खबरों की तरफ। तो पहली खबर ये आ रही है कि अटलांटिक एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा, ट्रैफिक से बड़ी राहत। जी हाँ, रैली के निवासियों के लिए आज एक सबसे अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ सालों से चल रहा अटलांटिक एवेन्यू का चौड़ीकरण और सुधार कार्य आखिरकार पूरा हो गया है। कल इसके उद्घाटन के बाद आज से वाहन चालक बिना किसी बाधा के नए रूट से बेहतर ट्रैफिक सिग्नलों और सुंदर फुटपाथों का आनंद जो है वो ले पा रहे हैं। मतलब बहुत दिनों से यहाँ पे ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम हो रहा था। ट्रैफिक इस कदर हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन अब ये ट्रैफिक का कोई सीनारियो नहीं रहने वाला है क्योंकि अटलांटिक एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ट्रैफिक से लोगों को राहत मिल रही है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

एंड जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया कि आरटीपी में यूएनसी हेल्थ का नया अस्पताल जो है वो खुल चुका है। रिसर्च ट्रायंगल पार्क आरटीपी के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से एक बेहतरीन खबर आई है। यूएनसी हेल्थ ने हॉबसन रोड के पास एक नई हाईटेक मेडिकल कैंपस का भूमि पूजन दैट इज ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इसमें 152 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब कहते हैं कि मेडिकल सुविधा अगर अच्छे से जिस देश की रहती है वो देश काफ़ी तरक्की करते रहता है, वैसे हुआ है। 152 बेड मतलब एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है। एंड ये यूएनसी हेल्थ का मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित पता नाइट्स, एंजॉय करते हैं। अगला गाना कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।